0: ठीक है सर, ठीक है।
1: Four 7 10 4 break. Call it 17.
2: Six one Kansas 10 5 7.
3: Go ahead.
2: 00 04 7 9 7 4. First of Brent.